प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण

0: जलस्थान की राजकुमारी सूर्पनखा,
1: वो मोहित हो गई है आप पे।
2: राम से प्रतिशोध लिया जाएगा सूर्पनखा। ना राम की मृत्यु साधारण होगी, ना उसका अपमान।
3: रावण तीनों लोकों का स्वामी है तो तीनों लोकों के सामने उसका वध करूंगा। मैं अपनी सीता को वापस लूंगा।

0: Now, the Indian Prime Minister has put out yet another video urging the youth to work with the government for a better India. Responding to the abuse of, Prime Minister Modi said that those using abusive language need to be guided better. Listening to what Prime Minister Modi said.
1: Hi friends, aaj to man karta hai bas aapse hi baatein karu. Jantar mantar par jo kuch bhi hua, देश और दुनिया ने देखा है. कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया. मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई. न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है. और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं. एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं.
0: At the India Couture Week, fashion designers showcased collections inspired by romance, literature and ancient cultural motifs. The models mocked the runway in intricately embellished ensembles. We'll leave you with these images. Thanks for watching.

0: Now, the Indian Prime Minister has put out yet another video urging the youth to work with the government for a better India. Responding to the abuse thereof, Prime Minister Modi said that those using abusive language need to be guided better. Listening to what Prime Minister Modi said.
1: Hi friends, aaj to man karta hai bas aapse hi baatein karu. Jantar mantar par jo kuch bhi hua, देश और दुनिया ने देखा है. कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया. मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई. न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है. और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं. एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं.
0: At the India Couture Week, fashion designers showcased collections inspired by romance, literature and ancient cultural motifs. The models mocked the runway in intricately embellished ensembles. We'll leave you with these images. Thanks for watching.

0: Now, the Indian Prime Minister has put out yet another video urging the youth to work with the government for a better India. Responding to the abuser of, Prime Minister Modi said that those using abusive language need to be guided better. Listening to what Prime Minister Modi said.
1: Hi friends, aaj to man karta hai bas aapse hi baatein karu. Jantar mantar par jo kuch bhi hua, desh aur duniya ne dekha hai. Kuch shararti bachchon ne bhaddi bhaddi galiyan boli. किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया. मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई. न जाने कितना भद्दा स्वरूप था. लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है. और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं. एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं.
0: At the India Couture Week, fashion designers showcased collections inspired by romance, literature and ancient cultural motifs. The models mocked the runway in intricately embellished ensembles. We'll leave you with these images. Thanks for watching.

0: Now, the Indian Prime Minister has put out yet another video urging the youth to work with the government for a better India. Responding to the abuse of, Prime Minister Modi said that those using abusive language need to be guided better. Listening to what Prime Minister Modi said.
1: Hi friends, aaj to man karta hai bas aap se hi baatein karu. Jantar mantar par jo kuch bhi hua, देश और दुनिया ने देखा है. कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया. मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई. न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है.

0: होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं।
1: At the India Couture Week, fashion designers showcased collections inspired by romance, literature and ancient cultural motifs. The models mocked the runway in intricately embellished ensembles. We'll leave you with these images. Thanks for watching.